0: मुन्ने तुझको क्या अच्छा लगता है।
1: लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप।

0: क्या बुरा लगता है बोल मुन्ने तुझको क्या अच्छा लगता है।
1: लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप।

0: सुंदर खोरदा।
1: यस डैडी।
0: अपनी भाषा में बोलो।
1: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।
2: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
3: नमस्ते।
2: जय हिंद ओ पिताजी।
3: जय हिंद।
2: नमस्ते नमस्ते है सबको।
4: नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

0: उड़ा सुबह की किरने आई है
1: बहुत अच्छे
0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है
1: वाह बेटा
0: सुबह की किरने आई है खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
1: नमस्ते
0: जय हिंद ओ पिताजी
1: जय

बनते बड़े हो चक्के पर अकल के बड़े हो चक्के, हर देखी कहाँ है दुनिया वो मेरे सामने बच्चे, हर मुझको हो मुझको।

महा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत जेनु चलैया जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा।

0: बेटा।
1: यस पापा।
0: बरखोरदार।
1: यस डैडी।
0: अपनी भाषा में बोलो।
1: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: și confes, sardar!
1: Toba, toba! ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा के मेरा रखी तेरे करीब अरे फूटे नसीब आपकी तारीफ
2: एक आशिक गरीब

यार भी थोड़ा तेरे बिना जीना, मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाए।